एवरीवन, वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग, एक खून, एक आजादी की दास्तान। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल लेता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी, और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला।
अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई। तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ। अशफाक ने झूठ बोला।

आचार्य 90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? एवरीथिंग ओके ना भाई? सबको ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आप सब हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे आचार्य 90FM का मिजाज आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रहता है। गौर फरमाइए, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उमंग लेकर आए हैं, आपकी बोरियत मिटाने हम रेसिपीज लेकर आए हैं। आज के शो पर बनेगा व्रत वाला खाना और साथ में बजेगा अच्छा सा म्यूजिकल तराना। साबुदाने से बनती है कॉमन वाली खिचड़ी, लेकिन साबुदाने का रूप बदलकर हमारी रेसिपी निखरी। व्रत को लेकर जब सात्विक हो जज्बात, तब स्वाद का जायका निभाने भारतीय सीमा लाई सौगात। जी हाँ, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी है साबुदाने से तैयार होने वाली एक स्पेशल डिश, और इसका रूप इतना अनोखा सा है कि व्रत ना रखने वाले भी इसे खाने के लिए बेकरार होंगे। भाई, पैनकेक जैसा दिखने वाला और लगभग उसी टाइप का ये खाना है। मैं बात कर रही हूँ डिलीशियस साबुदाना थालीपीट इस महाराष्ट्रियन रेसिपी की। साबुदाना थालीपीठ को साबुदाना, उबले आलू और रोस्टेड सेंगदाना से बनाया जाता है। ये एक बेहद पौष्टिक और क्रिस्पी पैनकेक है। इसे साबुदाना का चीला भी कह सकते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है, लगभग उसी तरह जैसे साबुदाना वड़ा होता है। इसमें फर्क ये है कि साबुदाना वड़ा को डीप फ्राई करते हैं और साबुदाना थालीपीठ को सेंकते हैं। इसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, एकादशी जैसे धार्मिक व्रतों के दौरान खाना लोग काफी पसंद करते हैं। आचार्य 90FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे पुरुषोत्तम मास मींस अधिक मास स्पेशल रेसिपी के तौर पर बना रहे हैं। भाई, तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। साबुदाना थालीपीठ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: रेगुलर वाला साबुदाना एक कटोरी, मूंगफली मींस सिंगदाना पाव कटोरी, आलू यानी कि बटाटा दो, हरी मिर्च दो, जीरा एक चम्मच, नींबू का रस एक चम्मच, शक्कर आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच नमक ले रही हूँ। सिंघारे का आटा पाव कटोरी, ये ऑप्शनल है। तेल आवश्यकता अनुसार मींस साबुदाना थालीपीठ को रोस्ट करने के लिए। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। रेसिपी सुनने से पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, उसमें साबुदाना को अच्छी तरह से धो लीजिए। अब उसका पानी हटा दीजिए। फिर उस धुले हुए साबुदाना को हमें पानी में भिगोना है। लगभग एक इंच ऊपर तक उसमें पानी को ऐड कीजिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं, या फिर 4-5 घंटे तक भिगोकर रखिए। जब ये पानी को अच्छे से सोक ले और फूल कर सॉफ्ट बने, तब आप समझ लीजिए कि ये परफेक्ट टेक्सचर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भिगोए हुए साबुदाना से एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए, अदरवाइज साबुदाना थालीपीठ थोड़ा चिपचिपा टाइप बन जाएगा। फिर हमें मूंगफली यानी कि सिंगदाना को रोस्ट करना है। इसके लिए एक पैन में मूंगफली को लो फ्लेम पर रोस्ट कीजिए। हाई फ्लेम पर मूंगफली जल सकती है और जली हुई मूंगफली का टेस्ट कड़वा सा लगता है। लगभग 5 मिनट के बाद मूंगफली रोस्ट हो जाएगी। जब तक ये गरम मूंगफली ठंडी हो जाए, हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारी रोस्टेड मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो गई है। हमें इस रोस्टेड मूंगफली का छिलका हटाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, मूंगफली के छिलके को आप जरूर हटाइए। उसके अलावा मूंगफली के दो पंखुड़ियों के बीच में जो डंठल रहता है उसे भी आप हटाइए, क्योंकि ऐसा करने से हम उस मूंगफली में से एसिडिटी को बढ़ाने वाला तत्व हटा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग टिप। अब छिलका और डंठल को पूरी तरह से हटा तो दिया है, फिर इस मूंगफली को मिक्सर में डालिए। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसे दरदरा मींस जाड़ा जाड़ा पीसना है, इसलिए इसे पल्स मोड पर मिक्सर में घुमाइए। अगर आपने इसे लगातार पीस लिया तो मूंगफली अपना तेल छोड़ देगी, इसलिए बी केयरफुल। इस क्रश्ड मूंगफली को आप साइड में रख दीजिए। अब हमें आलू मींस बटाटा को उबालना है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में आलू को उबाल ले सकते हैं। ठंडा होने पर हमें इन उबले आलूओं का छिलका हटाना है, लेकिन उसके लिए गर्मा गर्म आलूओं के ठंडा होने का इंतजार हमें करना पड़ेगा। जब तक उबले आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक आप एक गाना ही सुन लीजिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब उबले आलू ठंडे हो चुके हैं, इसलिए हम इसका छिलका हटाएंगे। छिलका हटाने के बाद इसे मैश कीजिए, मींस आलूओं को मसल लीजिए। अब हम मिर्ची को कूटकर एक साइड में रख देते हैं। साबुदाना थालीपीठ बनाने की तैयारी तो हो गई है, अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। एक बड़ी प्लेट में भिगोया हुआ साबुदाना लीजिए, फिर उसमें ऐड कीजिए बॉइल्ड और मैश्ड आलू, फिर उसमें डालिए स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी। नमक और चीनी के बाद उसमें डालिए जीरा और नींबू का रस। इसके साथ ही कूटी हुई मिर्ची और सिंघाड़े का आटा भी ऐड कीजिए। अब बारी आती है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की, इसमें मिलाइए ढेर सारा प्यार। अब इन सारी चीजों को अच्छे से गूंथ लीजिए, मींस जैसे हम आटा गूंथते हैं ठीक उसी तरह से इसे भी मिक्स कीजिए। हमें यहाँ पर पानी यूज नहीं करना, भिगोए हुए साबुदाना का मॉइस्चर और उबले आलू ही काफी है इसे बाइंड करने के लिए। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद साबुदाना थालीपीठ का आटा अच्छे से मिक्स होकर उसका गोला बनेगा। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तैयार आटे से आप इक्वल साइज के गोले बनाइए। जैसे रोटियां बनाते समय हम आटे के गोले बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह साबुदाना थालीपीठ के आटे के बॉल्स बनाइए। अब आप एक नॉनस्टिक पैन को गैस के ऊपर गर्म होने रख दीजिए, फिर एक चम्मच भर के तेल को उस गर्म पैन पर अच्छे से फैलाइए। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कीजिए। साबुदाना थालीपीठ के आटे का गोला उस पैन पर एकदम आराम से रखिए। अपने हाथों से उसे चपटा कीजिए, हमें इसे गोल आकार देना है। इसे चपटा करते समय आप सावधानी जरूर बरतें, कहीं हड़बड़ी में आपको गरम चटका ना लगे, इसका आप पूरा ख्याल रखिए। इस चपटे वाले साबुदाना थालीपीठ को लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए सेक लीजिए। 5 मिनट होने के बाद चम्मच की मदद से इसे सावधानी से पलट दीजिए। ऐसा करने से साबुदाना थालीपीठ दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा। इसे भी 5 मिनट के लिए पकाना है। हाई फ्लेम पर साबुदाना थालीपीठ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि हाई फ्लेम पर जल्दी बनेंगे, लेकिन फिर ऊपर से जला हुआ और अंदर से कच्चा जैसा टेस्ट आपको महसूस होगा, इसलिए बड़े इत्मीनान से मींस आराम से आप साबुदाना थालीपीठ को सेकिए। गोल्डन कलर के थालीपीठ को आप एक एक करके ही बनाइए। आप चाहे तो 2 पैन को यूज कर सकते हैं, इससे इस प्रोसेस को आप स्पीड अप कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस तरह धीमी आंच पर आप सारे साबुदाना थालीपीठ बना लीजिए। साबुदाना थालीपीठ सर्व करने हो गए हैं एकदम तैयार और इसे पेश करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। साबुदाना थालीपीठ बना के मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिख

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस गोल्डन कलर के क्रिस्पी साबुदाना थाली पीठ को एक सुंदर सी सर्विंग प्लेट में रखिए। नारियल की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। साथ ही ताजा दही जिसमें लाल लाल अनार के सुंदर से दाने बिखेरे हों उसे भी पेश कीजिए। जनाब, व्रत रखने वाला इंसान ऐसा कमाल का प्रेजेंटेशन देखकर एकदम खुश हो जाएगा। जब साबुदाना वड़ा फ्राई होता है तब कढ़ाई में से खौलता तेल यहाँ वहाँ छींटे उड़ा देता है जिससे चटका लगने का डर हमारे मन में रहता है। लेकिन इस मेथड से बनाया हुआ साबुदाना थाली पीठ हम एकदम सेफ मेथड से बना सकते हैं। जनाब, तली हुई चीजों को आप जरा कम ही खाइए क्योंकि ज्यादा तेल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और खाना फ्राई करने के लिए ईंधन भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस बात पर आप जरूर गौर फरमाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। जनाब, कुछ मीठा हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आज की अगली रेसिपी की तरफ। पिछली बार हमने फ्रूट श्रीखंड बनाया था, आपको याद है ना? आज हम बनाने वाले हैं सबका ऑल टाइम फेवरेट आम्रखंड। देखो आम्रखंड का नाम सुनते ही हमारे ऑडियंस के चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई है। बेसिकली आम्रखंड ये महाराष्ट्र और गुजरात की पारंपरिक और फेमस मिठाई है। आम्र मींस आम यानी मैंगो। आम से बना श्रीखंड मतलब आम्रखंड। आम्रखंड को पूरी के साथ बड़े चाव से परोसा जाता है। ज्यादातर गुड़ी पड़वा मींस हिंदू नववर्ष के समय आम्रखंड खाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। आज हम घर पर ही पारंपरिक तरीके से मलाईदार और गाढ़ा आम्रखंड बनाने की रेसिपी सुनेंगे क्योंकि गर्मी के सीजन में भारत के कई हिस्सों में ये वन ऑफ द फेवरेट और रिफ्रेशिंग रेसिपी ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे भी आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए हर सीजन को कुछ खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए अब हम आम्रखंड बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। आम्रखंड बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, अच्छे क्वालिटी का चक्का मतलब हंग कर्ड 750 ग्राम, शक्कर आधा किलो, पके हुए अल्फोंसो मैंगोज 3, इन्हें 2 घंटे के लिए पानी में डुबाकर रखिए। फिर हमें चाहिए इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, मिल्क मसाला या सोक्ड ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच। अब हम रेसिपी शुरू करने से पहले थोड़ी सी तैयारी करते हैं। सबसे पहले 3 में से 2 हापुस आम का रस आप निकाल लीजिए। वैसे श्रीखंड बनाते समय चक्का और शक्कर को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन आम्रखंड में हापुस आम का रस हम इस्तेमाल करने वाले ही हैं। उस आमरस की मिठास को हम ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, इसलिए शक्कर की मात्रा को हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आम्रखंड इस नॉन फायर रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में चक्का लीजिए, फिर उस चक्के में शक्कर ऐड कीजिए, साथ ही हमने जो आमरस बनाया था उसे भी मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाइए। चक्का में जितने लम्स हैं वो सारे निकलने तक हमें इस मिश्रण को ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं एक और बात बताती हूँ, अगर हमने समान मात्रा में शक्कर और चक्का लिया और उसके साथ आम्रखंड को मिलाया तो श्रीखंड का टेक्सचर थोड़ा ढीला टाइप हो जाएगा, इसलिए हमने शक्कर की मात्रा को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। लगभग 5-10 मिनट के बाद आम का रस चक्का में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद केसरिया रंग का आम्रखंड बनेगा। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आगे क्या, इतनी बेकरारी? तो जनाब सुनिए, 3 में से 2 हापुस आम का रस हमने बनाया था, उसमें से 1 हापुस आम को अच्छे से धो लीजिए, फिर उसका छिलका निकालकर आम के छोटे छोटे टुकड़े काटिए। हमने जो आम्रखंड बनाया है उसे एक कांच के बर्तन में एकदम नजाकत से डालिए, उस वक्त आम की खुशबू को महसूस भी कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, वैसे अभी तक आपको बाय हार्ट हुआ ही होगा कि खट्टी चीजों को धातु मींस मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से मेटल की क्वालिटी अफेक्ट होती है, इसलिए हम आम्रखंड को कांच के बर्तन में डेकोरेट कर रहे हैं। अब तैयार आम्रखंड पर कटे हुए मैंगो पीसेस डालिए, इससे इसका रूप और निखर आएगा। फिर क्या करना है, तो जनाब इस पर आप डालिए थोड़ा सा मिल्क मसाला या फिर चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। ऐसा करने से आम्रखंड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। अब इस आम्रखंड का भोग आप भगवान को लगाइए और चम्मच के बदले अपनी उंगलियों से ही इस आम्रखंड का लुफ्त एकदम इत्मीनान से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस आम्रखंड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अखंड भारत का आम्रखंड। मेरा भारत देश हमेशा रहे अखंड, चाहे हो महाराष्ट्र या गुजरात, सबको पसंद आम्रखंड। जब आम्रखंड के साथ होगी गर्मा गर्म पूरी, तब सारे होंगे अपने और ना रहेगी कोई दूरी। श्रीखंड में ऐड जब होगा आम, तब जरूर भोग लगाना लेकर प्रभु का नाम। गर्मी के सीजन में आता है आम, इसकी मिठास से मनाओ खुशियां खास। एशिया खंड का अनोखा हिस्सा मेरा भारत देश, सबको खिलाओ आम्रखंड जब मौका हो कुछ विशेष। खाने और खिलाने से पक्की होगी दोस्ती, इसे खाकर खूब करेंगे नन्हे ऑडियंस मस्ती। दूर होगी इससे रिश्तों की खटास, आम्रखंड खाकर मन में जागेगी मिठास। अब हम सुनते हैं

क्विक रिकैप। आज हमने बनाया साबुदाना थाली पीठ। साबुदाना आलू और सिंगदाने के मिश्रण से बना ये चीला क्रिस्पी और उपवास स्पेशल खाना है। डीप फ्राई करने की बजाय इसे कम तेल में रोस्ट करके हमने स्वाद का जायका बखूबी निभाया है कि नहीं। फिर हमने बनाया केसरिया रंग का आम्रखंड। मैंगो सीजन को निभाने की हमारी बात को हमने बड़ी शिद्दत से और कामयाबी से पूरा किया। इस झुलसती गर्मी में आम्रखंड खाकर हमारे प्यारे ऑडियंस को थोड़ी सी राहत देने की एक सफल कोशिश हमने की। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को सुनने के लिए आचार्य 90 FM चैनल को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं पक्का वादा। सोचती हूँ कि हर शायरी में ऑडियंस जी मैं आपकी तारीफ करूँ, फिर ख्याल आया कि सुनने वाला भी हमारे ऑडियंस का दीवाना ना हो जाए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Hey, thank you किसके लिए? I hope you're not too sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born insomniac. Sleeping pills बिना सोना impossible. But really, Akshay, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं.

0: नमस्कार, मी आदेश बांदेकर. तुम्ही ऐकता आहात आचार्य 90 FM. ऐकत रहा आचार्य 90 FM, युअर ओन रेडिओ.
1: नजदीक आओ. मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना, डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
2: ओके.
1: बाय द वे नेहा,

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time, ¿qué tal aquí?
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: ठीक है
1: क्या सीज़न ओके
3: पापा ऐसे एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं बस एक हफ्ता संभाल ले तो उसके बाद सारी दुनिया तेरी जहाँ जाना है जा।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।